छुटो डरो भय तो करो बढ़ती है कतार। एक या को दो है भले तीन नहीं चार यार नानकूड़ राजा।